0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: दुविधा वो स्थिति है जब हमारे सामने दो रास्ते हों और हम ये तय ना कर पाएं कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे समय में हमें घबराने की बजाय शांत मन से सोचना चाहिए, अपने अनुभव, सही गलत की समझ और अपने अच्छे परिणाम को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। सही निर्णय वही है जो हमें आत्मविश्वास और संतोष दें।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।

अभी आपने सुना नीना मेहता और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में एक भजन, और अब लीजिए सुनिए शोभा जोशी की आवाज़ में एक और भजन।

सुरेंद्र कोहली और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय

0: सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं धान में लगने वाले कीड़े, तना छेदक, गल मक्खी और भूरा फुदका के संदर्भ में। पहले बात करते हैं तना छेदक कीट के बारे में। ये कीट धान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की सुंडियां तने के केंद्रीय भाग को खाती हैं तथा इससे तना सूख जाता है। इस सूखे तने को मृत मध्य भाग या डेड हार्ट कहते हैं। यदि इस कीट का आक्रमण पुष्पगुच्छ कलिका विकसित होने के बाद होता है तो इसका परिणाम ये होता है कि सूखी हुई बालियां बाहर निकलती हैं। इसे सफ़ेद बाली या वाइट हेड कहते हैं। ऐसी बालियों में दाना नहीं होती। इस कीट के आक्रमण के कारण उपज में काफ़ी गिरावट होती है। आइए देखें कि तना छेदक का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि फसल कट जाने के बाद खेत में फसलों के अवशेषों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इन्हें साफ कर देना चाहिए, क्योंकि इन अवशेषों में तना छेदक के अंडे अथवा कीट की अन्य अवस्थाएं पनप सकती हैं। किसान भाइयों, जब आप नर्सरी से मुख्य खेत में पौधों की रोपाई करते हैं उस समय पौध का ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी अवस्था में अगर तना छेदक का प्रकोप होता है तो इस कीड़े के अंडे पत्तियों के ऊपरी सिरे पर रहते हैं। इस भाग को काट कर अलग कर देने से मुख्य खेत में इस कीट का प्रकोप कम होता है। जैविक नियंत्रण परजीवी ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम का 20,000 से 40,000 अंडे का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से अगर करें तो इससे भी इस कीट का नियंत्रण होता है। इसके लिए आप ट्राइकोकार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रात के समय प्रकाश प्रपंच के प्रयोग से आप कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन अथवा फोरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं भूरा फुदका कीट की। इस कीट के निम्फ व प्राउड दोनों ही भूरे रंग के होते हैं। ये कीट पौधों के कल्लों के बीच में जमीन की सतह से कुछ ऊपर तथा पुराने पर्णछत के भीतर पाए जाते हैं। इनको प्रातः एवं शाम के समय आसानी से देखा जा सकता है। ये कीट काफ़ी सक्रिय होते हैं और काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ये तनों का रस चूसते हैं जिसके कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इनका आक्रमण लगभग दुधिया अवस्था तथा दाने भराव के समय होता है। इनके रस चूस लेने के कारण दाने खाली रह जाते हैं। अधिक प्रकोप के समय पौधे गोलाई में झुलस जाते हैं। जहाँ तक इनके प्रबंधन का सवाल है तो इसके लिए आप खेत में पानी का भराव ना होने दें। खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 मीटर फासले पर आधा मीटर का रास्ता छोड़ें। नीम पर आधारित कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि पौधों पर 5 से 10 कीट प्रति पौधा दिखाई दें तब आप कार्बरिल 0.3 किलोग्राम क्रियाशील अवयव अथवा दानेदार कार्बोफ्यूरॉन 3G 0.25 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें या बुरकें। बुरकाव करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अवश्य रहना चाहिए। किसान भाइयों, भूरा फुदका कीट के बाद आइए बात करते हैं गौल मक्खी की। इसे पिटिका कीट भी कहते हैं। ये कीट फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीड़े की सुंडियां नुकसान पहुंचाती हैं। सुंडी द्वारा खाए जाने के कारण पौधों के नियमित कल्ले नलिकार पिटिकाओं का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में ऐसे कल्ले सूख जाते हैं और इन पर बालियां नहीं आती। इस कीट का प्रकोप पौध अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अब जहाँ तक इसके प्रबंधन का सवाल है तो किसान भाइयों, रोपाई से पहले धान की पौध का 0.02% क्लोरपाइरिफॉस घोल से उपचार करें तथा कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट दानेदार दवा का प्रयोग 0.6 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी में पौध उखाड़ने से 5 दिन पहले करें। इस उपचार से धान की फसल की प्रारंभिक अवस्था में गल मक्खी से रक्षा हो जाती है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट या क्लोरपाइरिफॉस दानेदार दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से नाशी जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं को कोई नुकसान नहीं होता और ये सुरक्षित रहते हैं।
0: एग्री टिप्स अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है, बहुत लोगों को हमें

0: व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation.

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए बुधवार 26 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी बृहस्पतिवार 27 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नालंदा लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी सेंटिनल कल दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी बुधवार 26 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कछाल और नानकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर बृहस्पतिवार 27 तारीख को श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे कैम्बल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कछाल आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जहाज कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 25 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कछाल शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी बम्बुका कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। और स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

0: बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रोताओं, आज कुछ बातें इसी प्यारी जमी की
1: और सुनेंगे इससे जुड़े कुछ मधुर और मन को छू लेने वाले गीत। दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में ताजगी हो और चारों ओर हरियाली नजर आए, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जमी भी कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो और आसमां भी उसके सुर में सुर मिला रहा हो। जमी और आसमां का यह रिश्ता भी कितना खूबसूरत है। एक हमें अपने पैरों के नीचे सहारा देती है तो दूसरा अपनी विशालता से हमें नई उड़ान के सपने दिखाता है।

दोस्तों कहते हैं ना, ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है, और इस खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला भी वही है जो हर पल हम पर अपनी मेहरबानी बरसाता है। कभी मिट्टी की खुशबू में उसकी मौजूदगी महसूस होती है, तो कभी खुले आसमान को देखकर दिल उसके शुक्र से भर जाता है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसी अनमोल खुशी दस्तक देती है कि लगता है जैसे कदम जमी पर है ही नहीं, दिल किसी हल्की सी हवा की तरह उड़ने लगता है। हर धड़कन में एक मीठी सी सरगम बजने लगती है, चेहरे पर मुस्कान अपने आप खिल उठती है और हर तरफ बस प्यार, सुकून और खुशियों के रंग बिखर जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त भी ठहर गया हो और हर लम्हा बस उसी खूबसूरत एहसास में खो गया हो।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह इंद्रधनुष कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुप्रभात। इंद्रधनुष।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 340वीं कड़ी।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिवान छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

0: अभी आप ए हरिहरन की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 340वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए, अंडमान में समुद्र के बीच धरती की गर्मी से बिजली की तलाश पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: समुद्र की

0: शहरों से घिरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहचान आज तक प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और जैव विविधता से रही है। अगर वैज्ञानिक जांच में उम्मीद के मुताबिक भूतापीय संसाधन मिलते हैं और वे आर्थिक रूप से उपयोगी साबित होते हैं, तो आने वाले समय में अंडमान में बिजली का एक नया और स्वदेशी स्रोत विकसित हो सकता है। यह संभावना केवल बिजली उत्पादन की नहीं बल्कि द्वीपों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की भी है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि अभी अंडमान में कोई भूतापीय बिजली घर बनना शुरू नहीं हुआ है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी SECI ने 4 अगस्त को एक रुचि की अभिव्यक्ति अर्थात EOI जारी किया है। इसका उद्देश्य ऐसी सक्षम एजेंसियों की पहचान करना और उनकी क्षमता का आकलन करना है जो अंडमान और निकोबार में भूतापीय संसाधनों का सर्वेक्षण, खोज और आगे संभावित बिजली परियोजना के विकास में विशेषज्ञता रखती हों। यानी फिलहाल यह खोज और जांच का चरण है, अंतिम निर्माण का फैसला नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो यह धरती के भीतर मौजूद गर्मी से पैदा होने वाली ऊर्जा है। जमीन के काफी नीचे चट्टानों और पानी का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। कुछ स्थानों पर यही गर्म पानी या भाप प्राकृतिक रूप से धरती की सतह तक पहुंचती है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से इस गर्मी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। इस ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सूरज की रोशनी या हवा की गति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए उचित भूतापीय संसाधन उपलब्ध होने पर बिजली का उत्पादन दिन रात और मौसम की परवाह किए बिना किया जा सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी भूतापीय ऊर्जा को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करता है जो 24 घंटे उपलब्ध रह सकती है और मौसम से स्वतंत्र होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। द्वीपों की भौगोलिक स्थिति उन्हें मुख्य भूमि से अलग बनाती है। ऐसे में ऊर्जा के लिए स्थानीय और भरोसेमंद स्रोत विकसित करना ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। भूतापीय ऊर्जा की संभावना की जांच इसी व्यापक जरूरत के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंडमान की भूगर्भीय स्थिति भी इस खोज को खास बनाती है। यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय है और इसी द्वीप समूह में बैरन द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है, सिर्फ सक्रिय ज्वालामुखी या भूगर्भीय गतिविधि होने का मतलब यह नहीं कि किसी स्थान पर व्यवसायिक स्तर पर बिजली पैदा करने लायक भूतापीय संसाधन निश्चित रूप से मिल जाएगा। यही कारण है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने पहले विस्तृत वैज्ञानिक जांच का रास्ता चुना है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के EOI में संभावित परियोजना की क्षमता 5 से 20 मेगावाट रखी गई है। संसाधन आकलन और व्यवहार्यता के चरण में लगभग 18 महीने लगने का अनुमान है। यदि संसाधन की पुष्टि सफल रहती है तो उसके बाद बिजली घर के विकास में लगभग 24 महीने लग सकते हैं। यह समय सीमा अनुमानित है। वास्तविक अवधि संसाधन, तकनीक और परियोजना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इस प्रक्रिया में केवल भारतीय कंपनियों के लिए ही रास्ता नहीं है, भूतापीय क्षेत्र में अनुभव रखने वाली भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ड्रिलिंग एजेंसियां, तकनीकी विशेषज्ञ, शोध संस्थान और ऊर्जा कंपनियां अकेले या साझेदारी में हिस्सा ले सकती हैं। विशेषकर गहरी ड्रिलिंग और भूतापीय तकनीक का अनुभव इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। PIB के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 381 गर्म जल स्रोतों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है। इनमें से 42 भूतापीय क्षेत्रों को बिजली उत्पादन और प्रत्यक्ष ऊष्मा उपयोग के लिए संभावनाशील माना गया है। समुद्र के बीच बसे इन द्वीपों को बिजली के लिए केवल बाहर से आने वाले ईंधन पर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े बल्कि उनकी अपनी धरती के भीतर छिपी प्राकृतिक गर्मी भी भविष्य की ऊर्जा का हिस्सा बने। अभी यह सपना है जिसकी वैज्ञानिक परीक्षा शुरू हो रही ही है, लेकिन हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक संभावना को गंभीरता से जांचने से ही होती है। अंडमान निकोबार की धरती ने सदियों से अपने भीतर गर्मी संभाल कर रखी है। अब विज्ञान उस गर्मी को समझने और उसे रोशनी में बदलने की संभावना तलाश रहा है। अगर जांच सफल हुई तो समुद्र से घिरे इन द्वीपों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जा सकती है, जहां धरती के भीतर की गर्मी आने वाले कल की स्वच्छ रोशनी बन सकती है।
1: अभी आप अंडमान में समुद्र के बीच धरती की गर्मी से बिजली की तलाश पर समाचार वार्ता सुन रहे हैं।

वतन के गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मछुआरों को 27 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

0: ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम आप 100.9 विविध भारती FM पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे बेला सावेर और नितिन मुकेश। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सवेरे 10:00। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1346वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत दिन में 11:30 पर कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु में सुनिए गाना लहरी कार्यक्रम। 12:30 पर मलयालम में सद्भावना दिवस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट प्रोग्राम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स। और 3:30 सुनिएगा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा बिग लपाती विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के तहत नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और चंदन दास को आप सुन पाएंगे। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल में 5:00 फास्ट बीट सॉन्ग्स के अलावा अन्य कार्यक्रम सुनवाए जाएंगे। 5:30 बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए आधुनिक गान। कृषि जगत कार्यक्रम संध्या 6:00, जिसमें डॉक्टर SK वर्मा से बातचीत का विषय रहेगा द्वीपों के लिए उपयुक्त चारा। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। मौसम की जानकारी, जलियानो का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत 7:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का रात्रि 8:00। 8:30 आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। और रात्रि 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात 10:00 100.9 विविध भारती FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 14.3 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 98% और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:35।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा।

0: रिक्वेस्ट करूंगी, उनको अर्ज करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सर्वेक्षण आज से शुरू। व्यवहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क आज से 28 अगस्त तक बंद रहेगी और श्री विजयपुरम में आज से 7 सितंबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।

0: को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में आदिवासी संग्रहालयों और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद अपने सभी 24 वार्डों में हेयर कटिंग सैलून, नाई की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, स्पा और अन्य प्रतिष्ठानों पर सर्वेक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों के नगर पालिका रिकॉर्ड तैयार कर उनका अद्यतन करना है। इसके लिए टीमें आज से इन जगहों का दौरा करेंगी। इस दौरान टीम के सदस्य जारी वैध पहचान पत्र साथ रखेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। सर्वे में प्रतिष्ठान की बुनियादी जानकारी शामिल होगी। नगर पालिका परिषद के भीतर आने वाले सभी प्रतिष्ठानों से सर्वेक्षण टीम को सही जानकारी देने की अपील की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कंसल्ट एजुकेशन के अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में उप शिक्षा कार्यालय विम्बरलीगंज की ओर से स्कूली छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अंडर 17 वर्ग के लड़कों के लिए अंतर स्कूली हॉकी टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। रोड रेस 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से मिनी स्टेडियम विम्बरलीगंज से आरंभ होगा। इसके तहत ओपन श्रेणी में स्कूली लड़कों के लिए 10 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर जबकि अंडर 14 श्रेणी के लिए लड़के और लड़कियों के लिए 5-5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। इसमें केवल विम्बरलीगंज शैक्षणिक अंचल के स्कूली छात्र भाग ले सकेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 27 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, EEG, EMG और NCV जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, PCOS, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से संचालित टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में गर्ल्स स्कूल ट्रैफिक पॉइंट से धर्मशाला जंक्शन तक का मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए आज से 28 अगस्त तक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस दौरान लोगों से यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। श्री विजयपुरम में आज से 7 सितंबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी मामलों की सुनवाई करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल कल ब्रिजगंज स्थित चिंते लॉन्ग फायरिंग रेंज में फायरिंग अभ्यास करेगा। ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने लोगों से अभ्यास के दौरान फायरिंग रेंज क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद

फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से इन द्वीपों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के तहत पंजीकृत किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। ये योजना कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है। द्वीप समूह के तीनों जिलों में खरीफ 2026 सीजन के लिए धान PMFBY के तहत अधिसूचित फसल है। योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को भूमि रिकॉर्ड या प्रशासन द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज 31 अगस्त तक जमा करने को कहा गया है। किसानों को अपने संबंधित क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक में भूमि दस्तावेजों के साथ संपर्क कर योजना के तहत अपना नामांकन कराना होगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है। नामांकन के बाद फसल को हुए किसी भी नुकसान की सूचना बीमित किसान सीधे 72 घंटों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहयोग से हाल ही में कैंबल बे स्थित पशु चिकित्सा अस्पताल की ओर से अजोला की तैयारी व खेती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। ये पहल किसानों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और खेत की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के लिए व्यवहारिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ दक्षिण अंडमान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहाड़गांव थाने में श्री विजयपुरम निवासी शरीफ खान, उषा कुमारी और रिंकू माला मंडल के खिलाफ कई लोगों से ठगी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। सूचना के अनुसार आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर पीड़ितों से नकद, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से मोटी रकम ली। पुलिस ने लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा लेने वाले ठगों से सावधान रहने और पीड़ित व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सर्वेक्षण आज से शुरू। व्यवहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क आज से 28 अगस्त तक बंद रहेगी और श्री विजयपुरम में आज से 7 सितंबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह की 7:15 और 30 सेकंड हुए हैं
4: और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिणी श्रोताओं, इस कार्यक्रम में है मातृभूमि की महिमा, वीरों की वीर गाथाएं और देश प्रेम के मधुर सुर। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां हिमालय सा अड़िग साहस है, गंगा सा पवित्र हृदय है और तिरंगे से ऊंचा स्वाभिमान है। हम गर्व से कहते हैं भारत देश महान है। ये धरती हमारी है, इसमें वीरों के बलिदान की कहानी है। हर कण कण में देशभक्ति की आग और शौर्य की निशानी है।

श्रोताओं, भारत देश महान है और हम इसकी संतान, इस मिट्टी का कर्ज हम अपने अच्छे कर्मों से चुकाएंगे। ये एक परिवार है और हम सब उसके गर्व से भरे हुए बच्चे हैं। जिस धरती ने हमें जन्म दिया, उसका सम्मान और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम भारत की संतान हैं। सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत ही हमारी असली शान है।

0: श्रोताओं, आइए संकल्प लें, हम अपने देश की गरिमा, एकता और सम्मान को सदैव बनाए रखेंगे। अब लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
1: देश रागिनी।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:31 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्रीविद्या। श्रोताओं, सुबह का वक्त हो, हाथ में चाय या कॉफी और साथ में पस

0: पसंदीदा गाने बज रहे हों, इससे खूबसूरत शुरुआत और क्या होगी। तो आज की सुबह भी कुछ ऐसे ही प्यारे गानों के नाम, कभी मौसम की बात होगी, कभी प्यार की, कभी किसी खास साथी की, और कभी बस सिर्फ संगीत। श्रोताओं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मौसम का एहसास और भी खूबसूरत लगने लगता है, और ये गाना भी कुछ ऐसा ही है, हल्का फुल्का प्यारा सा।
1: Two, one, let's start the fun.

किसी को पहली बार देखकर दिल में कुछ महसूस होना और फिर उस एहसास को शब्दों में कह पाना शायद इतना आसान नहीं होता, लेकिन गाने अक्सर वो बात कह देते हैं जो हम खुद नहीं कह पाते।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी, एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।

0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जिंदगी के सफर में अकेले चलना भी जरूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगे, तो सफ़र और भी अच्छा हो जाता है।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत म्यूजिकल मॉर्निंग में बस इतना ही। 5 गाने थे, अलग अलग एहसास के थे, कहीं मौसम का जादू, कहीं प्यार की बात, कहीं साथ की तलाश और कहीं बस संगीत की मिठास। और जाते जाते एक छोटी सी बात, जिंदगी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, जो पल अच्छा है उसे बस जी लीजिए। कार्यक्रम के साथ मैं थी आपकी दोस्त श्रीविद्या, और अब लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले

0: आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयं

0: सेवकों के साथ प्रगति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर

0: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: हर हर महादेव।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
5: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। समय बता दें आपको, इस समय सुबह के 8:41 हुए हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नितिन मुकेश की आवाज़ में एक गीत, और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए एक गज़ल नितिन मुकेश की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे बेला सावेर और नितिन मुकेश। और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सीता और गीता से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: के साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
1: मुझे लेके साथ चल तू।

0: उस्तादी उस्ताद से अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले और उषा मंगेशकर की, बोल दिलीप ताहिर की थे व धुन तैयार की थी राम लक्ष्मण ने।
1: ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: श्रोताओं, ये है चोर मचाए शोर फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? NACO व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना नाइट इन लंदन फिल्म का एक गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। और अब लीजिए सुनिए यादों की बारात फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। बोल मजरूह के हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग गोरख कल्याण। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको अंत में सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग केदार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म के गीत से इस गीत को गाया है ऋतु राज ने।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद इरफान की आवाज़ में द एक्सपोज। इस फिल्म का ये गीत समीर अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म हीरोपंती का ये गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में, बोल कौसर मुनीर के हैं।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म एक विलन का ये गीत। गीत एवं संगीत रचना मिथुन के हैं।

अब पीछे कुमार का लिखा एवं मीत ब्रॉस अनजान का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत मीत ब्रॉस अनजान, सलमान खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म का नाम है किक।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएं। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म सिंगम रिटर्न्स का ये गीत। बोल संदीप नाथ के हैं।

और अब आइए सुनते हैं क्रिएचर, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है बैनी दयाल ने, गीत एवं संगीत रचना मिथुन के हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1356वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोध की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता

0: हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस

0: तो कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे

0: द्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
2: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
0: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच

0: ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्तिकला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ऐसी मूर्ति तो मैंने
7: वाओ वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
4: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
5: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।

0: उस मूर्तिकार ने बताया।
1: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
3: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
3: वंडरफुल।
5: हाँ, हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है। कलाकार ने बताया,
1: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
2: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
2: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि
2: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। एक ही कलाकार इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको कल्याण जे आनंद जे के संगीत निर्देशन में तैयार चंद गीत सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, कल्याण जे आनंद जे हिंदी सिनेमा की एक महान और सदाबहार संगीतकार जोड़ी थी। आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को हुआ, जबकि उनके बड़े भाई कल्याण जी का जन्म 30 जून 1928 को हुआ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने गीत फिल्म से लिया है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, बोल आनंद बख्शी के हैं।

श्रोताओं, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत बेवफा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिने जगत के मशहूर संगीतकार आनंद जी का जीवन से प्यार उनके संगीतबद्ध इन पंक्तियों में समाया हुआ है। बचपन के दिनों से ही कल्याण जी और आनंद जी ने संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। तो आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का ये गीत।

0: हम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन की एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पर बीचेज़ हैं, यहाँ पर माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पर लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पर सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। श्रोताओं, इस समय आप एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार चंद गीतों का आनंद ले रहे हैं। श्रोताओं, अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्याण जी मुंबई आ गए जहां उसकी मुलाकात संगीतकार हेमंत कुमार से हुई। अपना वजूद तलाशते कल्याण जी को बतौर संगीतकार पहचान बनने के लिए लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 1960 में उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को मुंबई बुला लिया। इसके बाद कल्याण जी ने आनंद जी के साथ मिलकर फिल्मों में संगीत देना शुरू किया। आइए अब सुनते हैं कंचन मनहर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म कुर्बानी का ये गीत बोल इंदिवर के हैं।

0: greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी के उनके पसंदीदा निर्माता निर्देशकों में प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, फिरोज खान आदि प्रमुख रहे। कल्याण जी आनंद जी के सिने करियर पर नज़र डालने पर पता लगता है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर फिल्माई उनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म डॉन का ये गीत।

श्रोताओं, वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के नेशनल अवार्ड के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा सन 1974 में प्रदर्शित कोरा कागज़ के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। और अब आइए अंत में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लावारिस का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार छंद गीतों का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर्लु अनगा 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం నుంచి నేటి ప్రసారం ప్రారంభం.

0: याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పుడు వినండి ఈ పాట గానం వి రామకృష్ణ.

अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम का

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त

संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं, होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
1: Yes, sir.
0: तो आप सीखेंगे ना?
1: Yes, sir.
0: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब, दूसरी बार फिर लिखिए, होंगे कामयाब, और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: तो बच्चों, ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा लिखिए, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर,
0: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर, और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
1: हम चलेंगे साथ साथ,
0: डाल हाथों में हाथ,
1: डाल हाथों में हाथ,
0: हम हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं किसी का आज,
0: नहीं भय किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज,
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
1: यस सर।
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है, और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी ना तिनक दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बांट देख लीजिए, इसकी बोल बांट कैसे

0: एक दिन।
1: एक दिन।
0: हो हो मन में है विश्वास।
1: हो हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है।
2: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवें काले से।
0: अच्छा अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो। होगी शांति

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है, तो नलिन जी आप सिखाइए। एक दो तीन चार।

0: तो ये दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है?
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन नहीं डर, एक दो तीन
1: नहीं डर,
0: एक दो तीन

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे ग, और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: अब
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी, 1 2 3 4।

0: तो बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम सुन रहे थे, आओ हिल मिल गाएं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। कार्यक्रम के साथ आज

मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS जिसे हमें भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रेफ्यूजी का ये गीत, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज़ों में फिल्म रामलखन का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें दादा बाबू रोड गिरिहिड़ झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादियानी।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं।

0: एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है. कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है. इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है. यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं. बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है. यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है. प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं. यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है. तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ. सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है. वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं. वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम आल्सो. सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें. थैंक यू.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया. श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं दाग. इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और इस गाने की फरमाइश की है हमें पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने.

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाश

0: न है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने

0: ने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 28 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उन तमाम दोस्तों से जो इंतजार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हाँ नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हमारी बात हो रही है कल्याण जी से जो कि है मध्य प्रदेश से।
1: नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सिंह बात कर रहा
0: हूँ। जी जी जी, आप अपने रेडियो सेट से थोड़े दूर होकर बात करिए। जी हेलो।
1: हाँ दीदी।
0: जी कल्याण जी, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं वैसे आप?
1: मेरा सैलून है दीदी।
0: जी जी, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे दिन भर में, है ना?
1: जी जी, प्रोग्राम हमारे साथ साथ हमारे कस्टमर भी सुनते रहे।
0: अच्छा, तो उनको भी आनंद आता होगा ना?
1: जी जी,
0: आपके साथ वो भी बहुत सारे गानों का लुत्फ उठाते होंगे। जी जी जी, सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। वैसे किस तरह के गीत आप सुनना पसंद करते हैं?
1: मुझे तो सदाबहार गीत ही अच्छे लगते हैं, जो पुराने हैं। मुकेश जी हैं, रफी जी हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं,
0: जी
1: मतलब पुराने जो गीतकार हैं, गायक हैं, उनके मतलब गीत सुनने को बहुत अच्छे लगते।
0: जी जी जी, बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: जी हम आज फिल्म है संगम।

0: जी
1: इसका मुकेश जी और लता जी की आवाज में एक बेहद सुरीला और दर्द भरा गीत है, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम इस दिल के दो अरमान है।
0: जी बहुत खूब। और किन दोस्तों से के साथ आप ये गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी हमारे योगीराज मस्के जी हैं, गैराज लोधी जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं और खेमराज विश्वकर्मा जी हैं और गौतम राय बोले जी हैं, मुरलीधर ढोले जी हैं और प्रकाश जी हैं और हमारे बलवंत कड़ू जी हैं और तमाम सुनने वाले सभी दोस्तों के साथ साथ आपके लिए।
0: जी शुक्रिया।
1: चलते चलते दो लाइनें भी अर्ज करना चाहेंगे कि लम्हे लम्हे को तरसे थे लम्हे के लिए और लम्हा आया भी तो बस एक लम्हे के लिए। और जब इस लम्हे में आपसे बात हो रही है तो बेहद खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए। तो चलिए कल्याण जी सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: हमारी बात हो रही है रामलाल बिश्नोई जी से, जो कि है राजस्थान से। जी,
1: जी बिल्कुल।
0: क्या करते हैं वैसे रामलाल जी?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। मैं
0: अच्छा, तो इस वक्त आप ड्यूटी पर तैनात हैं या घर पर हैं?
1: ड्यूटी पे हूँ मैम।
0: अच्छा, तो ड्यूटी पर रहते हुए आपने कॉल किया है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी, बताइए कि हमारे कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं ड्यूटी के दौरान भी आपका नियमित रूप से चैनल के कार्यक्रम सुनता हूँ, विशेषकर हेलो डियर फ्रेंड्स।
0: जी, कैसा लगता है आपको हमारे कार्यक्रम?
1: सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक है और विशेषकर हेलो डियर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार कार्यक्रम है।
0: जी, और किस तरह के गीत आप पसंद करते हैं वैसे?
1: मैं मतलब पुराने और आधुनिक दोनों सॉन्ग को पसंद करता हूँ।
0: तो चलिए रामलाल जी, बताइए कि आज के इस कार्यक्रम में आप वो कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं?
1: जी, गीत के बोल हैं, नेकी तेरे साथ चलेगी, फिल्म का नाम है आंसू और मुस्कान।
0: जी, और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: मैं ये सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: तो चलिए रामलाल जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: डियर फ्रेंड्स.
1: हेलो डियर फ्रेंड.
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है योगेश मनारिया जी से, जो कि है मध्य प्रदेश से.
1: जी मैडम.
0: कैसे हैं योगेश जी आप?
1: बढ़िया है मैडम.
0: और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: मैडम हम हेड इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं यहाँ पे.
0: जी जी,
1: वायरिंग का काम वगैरह करते हैं.
0: वायरिंग का काम करते हैं जी. कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं आप?
1: 21-20 साल हो गए हैं.
0: अच्छा, काफी साल हो चुके हैं, है ना?
1: मैडम पहले ही काम था, मतलब स्कूल के बाद में इसी काम को सीखा.
0: जी जी,
1: इसी में मतलब कंटिन्यू आगे.
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है जी. अपने हाथ का काम बहुत ही अच्छा होता है ना. जी जी. और इसके अलावा आपके और कुछ शौक है?
1: हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं छुट्टी वाले दिन में.
0: जी जी जी, बस क्रिकेट खेलते हैं. इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल?
1: नहीं मैडम, खाली वो बाकी सब दोस्त वगैरह सबको ही वही पसंद है.
0: अच्छा, तो आपको भी वही पसंद हो गया?
1: जी मैडम, शुरू से वो एक ही.
0: हाँ हाँ हाँ जी, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है ना?
1: जी
0: जी, बहुत अच्छी बात है. बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: मैडम कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत है, तुझे याद ना मेरी आई किसी तरह.
0: जी जी, और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मैडम, जितेंद्र उपाध्याय है, रेवाराम कोठारी जी है, हनुमान राम शंकर है, आयुष है, नानक राम है, दीपक है, सभी लोग सुनते हैं.
0: जी तो योगेश जी, चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू मैडम.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, तकनीकी कारणवश हम आज आपके कॉल नहीं ले पा रहे हैं। चलिए सुनते हैं फिल्म क्रूक का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो।
0: जी, हमारी बात हो रही है मोहम्मद हारून जी से, जो कि हैं मध्य प्रदेश से।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार हारून जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं जिला विदिशा मध्य प्रदेश से, गांव है छोटा ग्राम ग्राम अकबरपुर है। मैं
0: जी
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ।

0: जी। और क्या करते हैं वैसे आप हारून जी?
1: हाँ, खेती बाड़ी करते हैं
0: खेती बाड़ी करते हैं। इन दिनों क्या
1: जी।
0: उगाए हैं आपने अपने खेत पे?
1: जी हमारे इधर मक्का और सोयाबीन बोया है। और इधर मौसम कैसा है?
0: जी
1: आपके इधर मौसम कैसा
0: जी
1: है?
0: मौसम तो हमारे यहाँ पे बरसात हो रही है, आपके वहाँ पे बताइए।
1: जी हमारे इधर तो 8 दिन रोज पहले बारिश हुई थी और कल अच्छी खासी बारिश हुई है।
0: जी। तो बारिश के दौरान आपके फसलों को नुकसान नहीं होता है?
1: जी बारिश का प्रतिशत कम हो रही है, पहले भी
0: जी।
1: बरसात हो रही है, जैसी बारिश होनी थी वैसी बारिश नहीं हो
0: नहीं
1: रही
0: हो
1: है।
0: रही है जी, सही कहा आपने जी।
1: जी और आप और आलू आकाशवाणी लोग कैसे
0: जी
1: हैं?
0: सब अच्छे हैं, आप बताइए आपके परिवार वाले सब कैसे हैं?
1: जी हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं।
0: जी हारून जी बताइए, आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: जी तुमसे अच्छा कौन है, कुमार सानू का गाया हुआ गीत सुना देना आप।
0: जी जरूर। और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी आप हैं गजरा रोदी हैं रुके पर।

0: सब अच्छे हैं। आप बताइए, आपके परिवार वाले सब कैसे हैं?
1: जी हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं।
0: जी हारून जी, बताइए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: जी तुमसे अच्छा कौन है, कुमार सानू का गाया हुआ गीत सुनवा देना आप।
0: जी जरूर। और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी आप हैं गजराज रोधी हैं, रुकित वर्मा हैं, भगवान सिंह परमार सिंह हैं,
0: जी।
1: आशुतोष हैं, त्रिपुरा के अविनाश हैं, त्रिपुरा के हैं, विजय पांडे हैं, शारदा प्रसाद हैं, भानु विदिशा के हैं। जिस श्रोता सुनना है लाइव प्रोग्राम सभी के लिए रहेगा।
0: जी। तो हारून जी, चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद आपका।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो। हाँ जी, हाँ
0: जी, हमारी बात हो रही है करणवीर जी से, जो कि है पंजाब से। कैसे हैं
1: जी,
0: करणवीर
1: मैडम
0: जी?
1: बिल्कुल ठीक है जी। मैडम आपसे नहीं है, आप आपसे हम
0: जी,
1: तो
0: हम भी अच्छे हैं। अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: बहुत बढ़िया है, ठीक है। इधर हाल चाल भी, मौसम भी बढ़िया हो गया है।
0: जी
1: हमारे
0: जी जी और क्या करते हैं वैसे आप?
1: यहाँ सिटी में ना पेंट की शॉप है,
0: जी, तो वहां पर आप काम करते हैं?
1: नहीं हमारी अपनी शॉप है पेंट की। हाँ
0: जी, अच्छा।
1: जी
0: और आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुन पाते हैं वहां पे?
1: बिल्कुल जी, हमें तो तकरीबन 3-4 साल हो गए लगातार आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं हम।
0: जी। और आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: आज का जो गीत है वो है फिल्म का नाम है, और गीत के बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: जी। और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ मेरे दोस्त हैं अलकंदर वर्मा जी, गुणवत राय, गौतम राय, त्रिपुरा से बनाज जी, एमपी से भगवान सिंह जी, जलंधर से रजेश्वर सोनू जी,
0: जी।
1: और सभी हेलो फरमाइश श्रोता रेडियो का ग्रुप तो ये डेलीगेट रहेगा और आपको भी डेलीगेट
0: जी,
1: रहेगा, आपके
0: शुक्रिया।
1: सभी टीम को भी।
0: तो चलिए, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी,
1: डियर फ्रेंड्स
0: हमारी बात हो रही है केशव जी से, जो कि हैं दिल्ली से।
1: जी। मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं केशव जी आप?
1: मैम हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इन दिनों तो मैम जो सावन का मौसम चल रहा है, तो आज तो दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई है।
0: जी जी
1: सावन का आज भी सोमवार भी है। अब जैसे त्योहार भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन आने वाले हैं,
0: जी
1: सभी
0: जी
1: देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, आपको भी।
0: जी आपको भी हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए केशव जी, आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
1: जैसे मैम मूवी है पुष्पांजलि, और गाने के बोले हैं दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ। जैसे कि मैम इस 2-3 महीनों में काफी सैड हो गए, जैसे मेरे नानी थी वो 25 जुलाई को एक्सपायर हो गई, और मेरे
0: अच्छा।
1: दादाजी भी थे वो भी, और एक दादाजी और थे वो भी 5 अगस्त को हो गए थे, तो इसी के उनके लिए ये गाना मैं वो पेश
0: तो
1: करना
0: ये
1: चाहता हूँ।
0: गीत आप उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप चढ़ा रहे हैं ना?
1: जी मैम
0: जी जी जी

0: चलिए केशव
1: और
0: जी
1: मैम क्वेश्चन में मित्र, जैसे फादर के, जैसे तो पहले आप ही के लिए,
0: जी शुक्रिया
1: और जैसे मेरे फादर है धर्मवीर जी, मेरा भाई है नितिन,
0: जी
1: और तो जैसे लोकेंद्र वर्मा जी, अंकल जी, पुष्कर नाथ जी, पुरुषोत्तम जी, संदीप जी, राकेश जी, और कुछ कुछ मित्र वैसे हैं, जैसे मेरी यशस्वी गुड़िया है भांजी,
0: जी जी
1: और मोनिका जी है, पूर्णिमा जी हैं, तनुश्री जी हैं, बाकी जारी सभी के लिए, गोल्डी, राकेश, लतीफ, जितने भी हैं सब सुनने वाले सभी के लिए हैं।
0: अच्छा तो केशव जी सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका।

कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उन सपनों की जो हमारी आंखों में नहीं बल्कि हमारे दिल में पलते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई सपना होता है। किसी का सपना आसमान छूना है, किसी का अपने परिवार को सुख देखना, तो किसी का अपने जीवन में एक नई पहचान बनाना।

श्रोताओं, सपने हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें भविष्य के लिए लक्ष्य बनाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल में सपना, आंखों में चमक रखो, मुश्किलों के आगे थोड़ा दम रखो, मंजिल खुद करीब आ जाएगी, बस अपने इरादों में दम रखो।

श्रोताओं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से बता नहीं पाते, बस दिल में छुपा कर रखते हैं। हर दिन उनके बारे में सोचते हैं, हर दिन उनके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे सपने को संभाल कर रखना, क्योंकि सच्चे सपने अक्सर खामोशी से ही पूरी होते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा में पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ला मिनी रोग्रहामंग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रामंग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees

0: ngat indai hangamana adin ke ke tiknya kishori te petul nepol atakrang si ti hek inurit hangnu minka talun ranjung ngaj inlahen mine madhi ngachang nu ta su ni rendin ke ke nadikak ni manuel lesli atimla ho yengatel ngang ne sindangamu hek inure changrong itaka saat ita fan kanor tala harap ngayen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं नीना मेहता और राजेंद्र मेहता को। रचना सरदार अंजुम की है।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम वारबर तोने का कलाम, जिसे स्वर दिया है नीना मेहता और राजेंद्र मेहता ने।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीना मेहता और राजेंद्र मेहता की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर बंगला में युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर एस के वर्मा के साथ की गई बातचीत का विषय रहेगा द्वीपों के लिए उपयुक्त चारा, घास व वृक्ष। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए पॉप मसाला संध्या 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण और सुनिए जन सूचनाएं। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी के तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशा। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए चित्रपट संगीत रात 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेश से आते हैं, तथा रात 10 बजे ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक

कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा करेले की खेती। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा नैन शीर्षक पर। 6:30 पर सुनिए रामचरित मानस गान। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप अनूप जलोटा और परवीन सुल्ताना को सुन पाएंगे। सवेरे 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TN शेष गोपालन का गायन आप सुनेंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्र गीत। तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12:00। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आशा भोसले, अशोक खोसला और राजेंद्र मेहता को आप सुन पाएंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉनस्टॉप म्यूजिक के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में इकबाल बानो और सोमेश कुमार को। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में शाम 5:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलेर उल्लगम। 5:30 पर बंगला में लोकगीतों का आप आनंद ले पाएंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म तू तक तूतिया से। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह ने, बोल मनोज यादव के थे, विशाल मिश्रा का संगीत था।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहारों की शाम। अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। समीर की रचना है, आनंद मिलिंद का संगीत है, फिल्म का नाम है दिल।

0: अभी आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, बहारों की शाम।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगम तमिळ अमुदम वणक्कम नेहिले। நானூற்று 38.6 மீட்டர் 684 கிலோஹெர்ட்ஸ் மத்திய அலைவரிசையில் எமது ஒலிபரப்பை தினமும் மாலை 5 மணிக்கு கேட்கலாம். இன்று பராபவ ஆண்டு ஆவணி திங்கள் 7 நாள், ஆகஸ்ட் மாதம் 24 தேதி திங்கட்கிழமை. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. இன்றைய தமிழ் முதல் நிகழ்ச்சியில் குரல் முதல் தகவல் நேரம், பார்த்ததும் படித்ததும் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் ரவிகேஸ்வரி அவர்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, தொல்லும் இசையருவி ஆகிய

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।
1: मानुष पराजयर जन्य सृष्टि हयनी, ताके हयतो ध्वंस करा जाय किन्तु हारानो जाय ना। अर्नेस्ट हेमिंगवे। नमस्कार बंधुरा, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र थेके प्रचारित बांगला अनुष्ठाने आपनादेर सकलके जानाई स्वागत। आज रयेछे जुबो श्रोता बंधुदेर जन्य जुबोबाणीर आसर।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला और अंत में अमृत। जीवन का सत्य भी यही है कि सुख पाने से पहले दुखों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति कठिन समय में अपना धैर्य नहीं खोता, वही अंत में सफलता का अमृत चखता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह आत्मिक बल है जो इंसान को पहाड़ जैसी मुसीबतों के सामने भी अडिग रखता है। याद रखें साथियों, रात कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सवेरा होना निश्चित है। बस विश्वास और धीरज बनाए रखना जरूरी है। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, लौंग का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुने, लौंग का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: द्वीपों के लिए उपयोग चारा घास व वृक्ष, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर एस के वर्मा जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।

0: डॉक्टर वर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो चारा उत्पादन की स्थिति है वो अभी कैसी है?
1: वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 40,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें से मात्र 10 से 12 हेक्टेयर में चारा उत्पादन किया जा रहा है। अधिकतर जो पशु हैं वो भरण पोषण के लिए या तो धान के पुआल के ऊपर निर्भर करते हैं या तो चराई के ऊपर निर्भर करते हैं।
0: अच्छा,

0: तो यहाँ पर आपके हिसाब से जो चारा उत्पादन है इसे बढ़ाने की अच्छी संभावना है।
1: हाँ, यहाँ पे जो चारा उत्पादन की अभी तक जो प्रचलन में नहीं है, अगर हम चारा उत्पादन शुरू करें तो हमारे पशुओं के लिए वर्ष भर चारा उपलब्ध रहेगा और उनका उत्पादन भी बढ़ेगा।
0: अच्छी बात है।
1: अभी तक क्या होता है कि हमारे जो किसानों के पास में जो पुआल उपलब्ध है, उनका सारा पुआल अक्टूबर से लेके दिसंबर के महीने तक समाप्त हो जाता है, और दिसंबर से लेके और मई जून तक पशुओं के भरण पोषण की बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जानवरों को खाने के लिए बहुत कम चारा उपलब्ध होता है, बहुत कम घासें उपलब्ध होती
0: अच्छी
1: हैं।
0: बात है डॉक्टर साहब। इससे इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें चारे के बारे में आपसे और जानकारी प्राप्त करें, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चारा है या हरा चारा, चाहे घास हो या वृक्ष से चारा प्राप्त हो, ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, कितना ज़रूरी है ये?
1: पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और उनकी उत्पादकता तथा उनकी जो जो प्रजनन क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए हरे चारे का बहुत ही अधिक महत्व है,
0: अच्छा
1: और प्रत्येक जानवर को रोजाना कम से कम 4-5 किलो हरा चारा जरूर मिलना चाहिए।
0: तभी जाकर जो उत्पादन क्षमता वगैरह जो है वो बनी रहेगी।
1: जी
0: चलिए तो डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं वो पशुओं के भरण पोषण को सुनिश्चित करने के लिए, चारा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: हमारे किसानों के पास में जो खेती योग्य भूमि है जिसमें कि चारा उत्पादन किया जा सकता है उसकी बहुत ही कमी है,
0: जी
1: और जो उनके पास में खेती उपलब्ध है, जो खेती योग्य जमीन उपलब्ध है, उसमें वो जनरली धान की खेती करते हैं। इसके अलावा उनके पास में बगीचे हैं, नारियल का बगीचा और सुपारी के बगीचे, जिनमें अभी तक चारा उत्पादन किसान भाई नहीं कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: तो हमारा यह सुझाव है कि जो नारियल के तथा सुपारी के जो बगीचे हैं उनके अंदर अगर चारा उत्पादन किया जाए, चारा घासों का उत्पादन किया जाए, तो वर्ष भर हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है।
0: अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे इन द्वीपों में अक्सर किसान भाइयों के पास नारियल और सुपारी के बागीचे हैं जैसे कि आपने कहा, और उनके बीच में काफ़ी जगह भी उपलब्ध है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चारा उत्पादन बड़ी अच्छी तरीके से इन बागानों में किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन-कौन से ऐसी घासें हैं जिन्हें कि किसान भाई उगा सकते हैं?
1: जो हमारे नारियल तथा सुपारी के बगीचे हैं उनमें दो पेड़ों के बीच में कम से कम 7.5 मीटर की दूरी रखी जाती है, और उनके बीच का जो स्थान है
0: जी
1: वो अक्सर खाली रहता है, उसमें कोई भी चीज़ पैदा नहीं की जाती है। तो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान में ये जो रिसर्च किया गया कि
0: जी
1: अगर हम नारियल के दो पेड़ों के बीच में गिन्नी घास को लगाएं
0: अच्छा
1: तो हमें हरे चारे का उत्पादन अच्छी सफलतापूर्वक मिल सकता है।
0: अच्छा यानी आपके कहने के मुताबिक ये जो गिनी घास है ये नारियल और सुपारी के बागीचों के लिए काफ़ी उपयुक्त है या उगाया जा सकता
1: जी,
0: है?
1: जो ये गिनी घास है ये शेड लविंग घासों की श्रेणी में आती
0: अच्छा,
1: है,
0: छाया पसंद
1: जो
0: करती
1: छाया
0: है।
1: पसंद करती है, इसलिए नारियल की जो दो पेड़ों के बीच में अगर हम इसको लगाएंगे तो इसका उत्पादन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, और वर्ष भर हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है।
0: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसानों को ज़रा ये भी बता दें कि जो गिनी घास है उसको नारियल और सुपारी के बागीचों में वो कैसे उगाएं, उत्पादन तकनीक के बारे में ज़रा बताएं।
1: जी, गिनी घास को नारियल और सुपारी के बगीचों में लगाने के लिए हम दो विधियों से इसको लगा सकते हैं। एक तो है हम इसके जो गिनी घास का बीज है उससे हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं,
0: अच्छा
1: और नर्सरी जब तैयार हो जाती है हमारी तो हम उसको दो पेड़ों के बीच में जो जगह है उसमें उसका रोपण कर देते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि हम जो हमारे पहले से हमारे पास में गिनी घास के पौधे उपलब्ध हैं उसकी कटिंग लेते हैं,
0: अच्छा
1: और रूटेड स्लिप ले सकते हैं या कटिंग ले सकते हैं,

0: और नर्सरी जब तैयार हो जाती है हमारी, तो हम उसको दो पेड़ों के बीच में जो जगह है उसमें उसका रोपण कर देते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि हम जो हमारे पहले से हमारे पास में गिनी घास के पौधे उपलब्ध हैं उसकी कटिंग लेते हैं, और रूटेड स्लिप ले सकते हैं या कटिंग ले सकते हैं, और उन कटिंग्स को हम सीधे एक पातू से एक गड्ढा खोद के और उसमें अगर हम पौधे को लगा देंगे तो वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। अब बात कर आती है कि हम गिनी घास की नर्सरी को तैयार कैसे करेंगे।
1: जी
0: गिनी घास की नर्सरी तैयार करने के लिए हम लगभग 100 वर्ग मीटर ज़मीन में एक क्यारी बना लेंगे, एक नर्सरी के लिए एक अच्छे तरह से उसको खोद
1: जोत
0: लेंगे।
1: लेंगे।
0: उसके बाद में उसमें लगभग 1 किलो गिनी घास का बीज, बहुत छोटा छोटा बीज होता है ये, उसको हम इसमें छिड़काव विधि से छिड़क देंगे। उसके ऊपर थोड़ा गोबर और खाद, गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण को बना के एक बहुत पतली सी परत उसके ऊपर हम ढक देंगे, और उसके बाद में उसको थोड़ा पानी दे देंगे ताकि नमी बनी रहे, और ऐसा करने से लगभग 3-4 दिन के अंदर में अंकुरण हो जाएगा बीज का और पौधा उगना शुरू हो जाएगा, और लगभग 45 दिन बाद ये जो पौधे तैयार होंगे वो रोपने के लिए
1: लायक हो
0: खेत में
1: जाएंगे।
0: तैयार हो जाएंगे,
1: अच्छी बात है।
0: रोपने के लायक हो जाएंगे।
1: तो आपकी सलाह क्या होगी, अगर किसान भाई नारियल और सुपारी के बीच में इसकी रोपाई करें तो कतार में करनी चाहिए या ऐसे ही कर सकते हैं?
0: इसके लिए जो कतार में बुआई करें रोपाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे जो दो नारियल के पेड़ हैं उनके बीच में 7.5 मीटर की दूरी है, तो किसान भाई क्या करें कि दोनों तरफ सवा सवा मीटर छोड़ दें, 1.25 मीटर दोनों तरफ छोड़ें पौधे से लगता हुआ स्थान। उसके बाद में जो 5 मीटर बिल्कुल बीच
1: बीच
0: का
1: का
0: जो
1: रखें।
0: स्थान बचता है, उस 5 मीटर बीच वाले स्थान में लगभग 10 पंक्ति गिनी घास की हम लगा सकते हैं। जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी वो लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखेंगे, और पौधे से पौधे की दूरी भी 45 से 50 सेंटीमीटर रखेंगे। तो दो नारियल के पेड़ के बीच में लगभग 10 पंक्तियाँ
1: आ
0: गिनी घास
1: सकती
0: की हम
1: है,
0: आसानी
1: आ
0: से लगा
1: सकती है।
0: सकते हैं।
1: और हमारे द्वीपों में बहुत सारे किसान भाइयों के पास नारियल के बीच में इतनी ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी अपने हिसाब से जितनी ज़मीन है कतारों को कम करो लगा सकते हैं
0: हाँ
1: उसमें
0: यस, अगर उन्होंने दो नारियल के बीच में कम जगह छोड़ी हुई है तो वो उसी
1: अपने
0: के
1: हिसाब
0: अनुसार
1: से।
0: अपना
1: सही।
0: 45 से 50 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए पौधे से पौधे और पंक्ति से
1: पंक्ति
0: पंक्ति
1: के बीच
0: वो बीच में रोपण कर सकते हैं। उससे नारियल की उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं
1: नहीं
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, आपने बीज के अलावा जो कटिंग्स की भी बात कही थी, अगर किसी के पास घास है एक बार उसने उगा दिया है तो अगली बार के लिए वो कटिंग्स ले सकते हैं, ये कटिंग्स नीचे से लेना होता है?
0: ये कटिंग, इसमें क्या करना होता है कि ऊपर से तो हम पौधे को
1: काट
0: हार्वेस्ट कर
1: लेते हैं
0: लेंगे,
1: जी।
0: कटाई कर लेंगे। जो पौधे का थोड़ा नीचे का स्थान है, जो गांठदार स्थान है, उसमें हम 3 गांठों वाले टुकड़े लेंगे। पूरे पौधे में से 2-3 टुकड़े बन जाएंगे हमारे, जिसमें लगभग 3 गांठ उपलब्ध हो। 3 गांठ से मतलब हमारा ये है कि जब हम उसकी रोपाई करेंगे कटिंग की, तो 2 गांठ हमारी ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। एक गांठ ज़मीन के अंदर जाएगी बिल्कुल, दूसरी गांठ ज़मीन से टच करती हुई रहेगी, और तीसरी गांठ हवा में रहेगी। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे की 2 गांठें हैं उनसे जड़ निकलनी शुरू हो जाएगी और वो पौधा जो है ज़मीन में स्थापित हो जाएगा।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, गिनी घास का जो गिनी घास की रोपाई कैसे करें ये तो आपने बता दिया, नर्सरी कैसे लगाएं इस बारे में आपने बताया। जब इसकी कटाई होती है तो उसके बाद कौन कौन सी विशेष कृषि क्रियाएं किसानों को करनी होती है?
0: एक बार रोपाई करने के लगभग 4 महीने बाद में हम पहली कटाई लेंगे। 4 महीने से पहले हम कटाई नहीं लेंगे, पहली बार 4 महीने में कटाई लेंगे।
1: जी
0: उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट हमारी जो कटाई होंगी, उसके बाद में जो कटाई लेंगे हम, वो हम 60 से 75 दिनों के अंतराल पे ले सकते
1: एक
0: हैं।
1: से 1.5 महीने बाद फिर ले सकते हैं,
0: नहीं,
1: मतलब
0: साठ
1: दो से ढाई
0: से
1: महीने
0: या
1: दो से ढाई महीने
0: 60 से 75 दिन, माने 2 से 2.5 महीने के अंतराल पे हम इसकी कटाई ले सकते हैं। और हमें खास ध्यान ये रखना है कि कटाई लेने के बाद में हमें वहाँ पे गोबर की खाद लगानी होगी खेत में, जहाँ भी हमने रोपाई किया हुआ है, और उसकी दर रहेगी हमारी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर।
1: एक वर्ग मीटर
0: एक
1: में
0: वर्ग मीटर में 1 से 1.5 किलोग्राम गोबर की खाद, अच्छी
1: जी
0: तरह तैयार जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जो आने वाली जो कटिंग्स हैं उनमें हमें बेहतर पैदावार
1: मिल सकती
0: मिलेगी।
1: है। अच्छा, ये घास से कितनी बड़ी हो जाती है डॉक्टर साहब?
0: ये इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वो 6 से 7 फीट तक आराम।
1: लंबी घास मिल
0: जी
1: जाती है
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसको पशुओं को देने से पहले कुछ खास बातें ध्यान में रखनी
0: हाँ,
1: होंगी?
0: ये तो किसी भी जो हम

0: लंबी घास मिल
1: जी
0: जाती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसको पशुओं को देने से पहले कुछ खास बातें ध्यान में रखनी
1: हाँ,
0: होंगी?
1: ये तो किसी भी जो हम जो घास का उत्पादन करते हैं, कोई भी घास अगर हमारे पास में उपलब्ध है, उसको पशुओं को खिलाने से पहले अगर हम उसका टुकड़ा करके देंगे, उसकी कुट्टी काट के देंगे, तो उसका जो पाचन है वो अच्छे तरीके से होगा। और जानवर जो वेस्ट करने की एक टेंडेंसी होती है, कि जानवर की एक प्रवृत्ति होती है कि वो जो कोमल भाग है पौधे का उसको तो खा लेता है,
0: बाकी
1: और जो
0: छोड़
1: कठोर
0: देता
1: भाग है उसको छोड़ देता है। तो जब हम कुट्टी काट देते हैं घास की, तो वो पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है एक साथ, और जानवर द्वारा उसके वेस्ट किए जाने की संभावना बहुत कम हो
0: और
1: जाती
0: चारे
1: है।
0: की बर्बादी बहुत कम
1: जी,
0: होती है।
1: बर्बादी कम हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, 1 हेक्टेयर नारियल के बागीचे में कितना चारा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है?
1: 1 हेक्टेयर नारियल का अगर बगीचे में हम गिनी घास का रोपण कर दें, तो एक साल में कम से कम 4 कटाई में हम 400 क्विंटल तक हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं।
0: 400 क्विंटल तक आ
1: 400
0: सकता है।
1: क्विंटल तक, जी
0: चलिए, तो चारे की समस्या पूरी तरह से हल हो सकती है।
1: जी काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाएगी चारे की समस्या।
0: डॉक्टर साहब, गिनी घास के अलावा भी कुछ ऐसी घासें हैं जिन्हें कि हमारे इन द्वीपों में जो ढालू ज़मीन है वहाँ पर हम उगा सकते हैं?
1: जी, हमारे किसानों के पास में बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जो ढालू है, और उस पर कोई दूसरी फसल नहीं ली जा सकती है। तो उन सब ज़मीन का जो उपयोग है वो हम चारा उत्पादन के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए हाइब्रिड नेपियर
0: जी,
1: और पैरा घास, इन दोनों का सफलतापूर्वक जो है उत्पादन किया जा सकता है ढालू जमीन पर।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर कहते हैं ना कि ढालू ज़मीन में अगर कुछ भी किया जाए तो मट्टी कट जाती है, मतलब थोड़ा सा ध्यान
1: जी
0: देना होता है।
1: जी
0: तो ये जो हाइब्रिड नेपियर और पारा घास है, इसको ढालू ज़मीन में किसान कैसे लगाए, किन बातों पर ध्यान दें?
1: जो ढालू जमीन है हमारी, अगर हम उसमें हाइब्रिड नेपियर लगाएंगे, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो हम उसको बोलते हैं सोयल वर्किंग, यानी कि बहुत ज़्यादा
0: खुदाई वगैरह
1: खुदाई
0: की।
1: जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे हमें पौधा लगाना है हाइब्रिड नेपियर का, हम वहीं पे एक फावड़े से, पातू से एक गड्ढा करेंगे, और उसमें हम हाइब्रिड नेपियर का पौधा लगा देंगे। तो
0: अच्छा,
1: इस तरह रोपाई करने से उसमें जो मृदा क्षरण की समस्या है, मिट्टी बहने की समस्या है, वो पैदा नहीं होगी। इसके अलावा जो पैरा घास मैंने बताई है, उसका तो बल्कि मृदा क्षरण को रोकने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है घास की, प्रवृत्ति है, वो फैलने की है। ये ज़मीन पे फैल जाती है, और फैलने से ये ज़मीन के जो मिट्टी के कण हैं उनको बहुत अच्छे से जकड़ के रखती है, और उससे जो सॉयल लॉस है, मृदा क्षरण है, वो बहुत कम हो जाता है।
0: जी हाँ। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड नेपियर और पारा घास है, तो इससे उपज कितना मिल सकता है?
1: हाइब्रिड नेपियर कि हम 5 से लेके 6 कटिंग तक यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 6 महीने तक, 6-7 महीने तक अच्छी वर्षा
0: बारिश
1: होती
0: होती है।
1: है,
0: जी हाँ।
1: और इस बार तो मौसम और भी अच्छा है कि हमें मार्च अप्रैल के महीने में भी बारिश मिल रही है। तो यहाँ पे हाइब्रिड नेपियर की जो पैदावार है वो लगभग 750 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली
0: आ
1: जा
0: सकते
1: सकती
0: हैं।
1: है। जो पैरा घास है, इसका जो उत्पादन क्षमता है वो थोड़ी कम है हाइब्रिड नेपियर और गिनी घास के मुकाबले में, तो फिर भी हमें पैरा घास से 600 से लेके 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल
0: मिल
1: सकती है।
0: सकती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही घासों की, इसके अलावा कुछ उपयुक्त चारा वृक्ष भी हमारे इन द्वीपों के लिए हैं?
1: जी हाँ, अभी तक मैंने ये देखा है कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो किसान भाई हैं, वो केवल या तो जिंदाबल्ली उसका उपयोग करते हैं, उसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं चारा चारा पत्तियों के रूप में, और या तो कुछ एक लोग जो है बकरी पत्ती, ट्रेमाटोमेंटोसा उसको हम बोलते हैं, बकरी पत्ती का प्रयोग करते हैं बकरी को खिलाने के लिए। केवल दो ही जो पौधे हैं, जो चारा वृक्ष हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि यहाँ की जलवायु के लिए एक सुबबूल नामक एक झाड़ी नुमा एक पौधा है, वृक्ष है, उसका अगर हम उगाएं उसको, तो उससे हमें वर्ष भर हरा चारा मिल सकता है। और सुबबूल से 1 हेक्टेयर से लगभग 150 से लेके 200 क्विंटल तक चारे की प्राप्ति होती है।
0: अच्छी बात है। तो सुबबूल तो मुख्य भूमि वगैरह में चारा वृक्ष के रूप में काफी प्रचलित है।
1: जी, सुबबूल बहुत ही पोषक जो है चारा वृक्ष है। इसकी पत्तियों में लगभग 20% प्रोटीन की मात्रा होती है, और ये बकरियों के लिए तो खास तौर से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।
0: अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये जो सुबबूल है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और चारा वृक्ष हैं जो हमारे यहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त है?
1: जी हाँ, सुबबूल के अलावा बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, इसके अलावा जिंदावल्ली मैंने पहले बताया ही है, बकरी पत्ती, ट्रेमाटोमेंटोसा, इसके अलावा रेन ट्री है, समानिया, समन, इन इनका उपयोग भी हम चारा वृक्ष के रूप में कर सकते हैं। और एक और वृक्ष है कटहल।

0: अच्छा जी हाँ,
1: कटहल का उत्पादन यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत अच्छा होता है, मगर ये चारा वृक्ष के रूप में अभी तक प्रचलित नहीं है। तो कटहल की पत्तियाँ हम सभी जानवरों को सफलतापूर्वक खिला सकते हैं, और जो कटहल का जो फल है उसको भी हम कच्चा फल भी और पका हुआ फल भी, अगर हम उसको सुअर पोषण के लिए हम प्रयोग करें तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुबबूल है उसको उगाने के लिए किसान भाइयों को इसका बीज बोना होगा। इसका जो उत्पादन है वो बीज के द्वारा किया जाता है, और बीज उत्पादन दोनों तरह से कर सकते हैं। बीज द्वारा बुआई हम दोनों तरह कर सकते हैं, या तो हम सीधे खेत में बो सकते हैं
0: जी
1: उसको,
0: हाँ,
1: और या तो हम पहले उसको नर्सरी में
0: लगा सकते हैं।
1: लगाएं। और नर्सरी में लगाने के लिए हम उसको पॉलीथीन के अंदर, जो
0: जी
1: प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उसके अंदर मिट्टी और खाद का मिश्रण भर के उसमें हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे सुबबूल का बीज उसमें डाल देंगे, और उसके बाद में उसको हम पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में छाया में रख देंगे सभी थैलियों को, जो भरी हुई थैलियाँ हैं हमारी, उनमें से लगभग 4-5 दिन के अंदर में अंकुरण शुरू हो जाएगा। और अगर हम उसमें बराबर नमी बनाए रखेंगे, ठीक तरह से उसकी देखभाल करेंगे, उसमें जो वीड्स आ जाएंगे उसको निकाल देंगे, जो खरपतवार आ
0: खरपतवार
1: जाएंगे,
0: जो रहते हैं।
1: तो उसके बाद में लगभग 2 महीने की जो पौध होगी उसको हम खेत में, खेत के चारों तरफ मेड़ मेड़ के ऊपर, ढालू जमीन पर, जो भी ऐसी जमीन है जो काम में नहीं लाई जा रही है अभी तक, खेती योग्य नहीं है, कोई दूसरी फसल हम नहीं ले रहे हैं, तो उसमें हम वो जो हमने 2 महीने की हमारी जो
0: पौध जो है,
1: पौध है उसको हम लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो सुबबूल का पेड़ है ये कई वर्षों तक बना रहता है एक बार हो जाने के
1: जी
0: बाद।
1: हाँ, एक बार लगाने के बाद में इससे हम कई वर्षों तक लगातार चारा उत्पादन ले सकते हैं। और जैसे हम बाकी घासों की कटाई करते हैं कि साल में 4-5 कटिंग लेते हैं, उसी तरह सुबबूल की भी लगभग 4 से लेके 5 बार हम उससे पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। और जो उपज है वो मैंने पहले ही बताया है कि 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे हमें
0: प्राप्त हो सकती
1: प्राप्त हो
0: है।
1: सकती है।
0: चलिए, तो डॉक्टर साहब आज आपने हमारे इन दीपकों के लिए उपयुक्त चारा घासों और चारा वृक्षों के बारे में किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। खासतौर पर जैसे कि आपने शुरू में कहा, जो हमारे इन दीपों में कुछ एक महीने होते हैं जहाँ पर कि जब किसान भाई चारे के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, अगर उन्होंने अपने बागान का सही इस्तेमाल किया, आपकी बातों पर ध्यान दिया, तो इस समस्या से वो निजात पा सकते हैं।
1: जी
0: डॉक्टर वर्मा, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप डॉक्टर एस के वर्मा जी से द्वीपों के लिए उपयुक्त चारा, घास व वृक्ष के विषय में ये बातचीत सुन रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: किसान साथियों, आइए अब हम कुछ जानकारी देंगे जिसका विषय है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। तो चलिए ले लेते हैं ये जानकारी। किसान साथियों, जैसा कि भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करती है, जैसे कि किसान भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ है, उनकी देखभाल करना और उन्हें सहायता प्रदान करना समय की आवश्यकता है ताकि वे अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक योगदान दे सकें। यही कारण है कि सरकारें समय समय पर किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की शुरुआत करती रहती है।

0: पीएम किसान ट्रैक्टर योजना एक ऐसी योजना है जो देश के किसानों की मदद करती है। आजकल कृषि को आसान बनाने के लिए मशीनरी का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा है। ट्रैक्टर एक अधिक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है जो खेती को आसान बनाता है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का तर्क उन जरूरतमंद किसानों को सुविधाएं देना है जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यही योजना स्पष्ट रूप से ट्रैक्टर से संबंधित है। ट्रैक्टर खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण सभी किसान इसे वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है और इससे लागत बढ़ जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रैक्टर योजना शुरू की, जिसके तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये योजना पहले से ही देश के कई राज्यों में अपने स्तर पर लागू की जा रही है। देश का कोई भी किसान जो कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, वह इस स्कीम के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन के बाद सरकार यदि वह पात्रता मानदंड को पूरा करने में सफल होते हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20-50% सब्सिडी राशि मुहैया कराएगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए आपको राज्य सरकार के पास आवेदन जमा करना होगा। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में ऑफलाइन माध्यम से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है, इसलिए आवेदन करते समय आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही यह बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। पहले से प्राप्त किसी भी सरकारी योजना का लाभ लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से होता है, और डीबीटी धन प्राप्त करने के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से ज्वाइन होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, इस विषय में अभी आपने ये छोटी सी जानकारी हासिल की।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, लौंग का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, लौंग का प्रवर्धन बीजों द्वारा किया जाता है। फलों को रात भर पानी में भिगोकर बोने से पहले छिलका हटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। किसान साथियों, अगर हम घड़ी की ओर देखें तो समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रही है, इसलिए हमें लेना होगा आपसे विदा। लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम पॉप मसाला।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड से। इस गीत को गाया है श्वेता पंडित और सुखविंदर सिंह ने।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पॉप मसाला।

अभी आपने फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में हिमेश रेशमिया को सुना। आइए अब सुनते हैं मैं तेरा हीरो फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह और सलमली खोलगड़े की आवाज़ों में।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अभी आपने मैं और मिसेस खन्ना फिल्म का ये गीत सुना, वाजिद, सुनिधि चौहान, उवी, फरहाद और राजा मुश्ताक की आवाज़ों में। अब सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म का ये गीत सलीम मर्चेंट की आवाज़ है।

और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कुंवारा से आवाजें हैं सोनू निगम और हेमा शरदेसाई की।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का माफ कीजिएगा जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी के तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशा। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेश से आते हैं, तथा रात 10 बजे ही FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा करेले की खेती। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे। सवेरे 6:10 पर, 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा नैन शीर्षक पर, 6:30 पर रामचरित मानस गान, मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर, 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी, 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप TN शेष गोपालन का गायन सुन पाएंगे। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:00 और मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉनस्टॉप म्यूजिक के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप इकबाल बानो और सोमेश कुमार को सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में शाम 5:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलेर उल्लगम। 5:30 पर बंगला में लोकगीतों का आप आनंद ले पाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6:00 मंगलुटान निवासी श्री हीमो ज्योति

भट्टाचार्य से की गई बातचीत का विषय रहेगा, पशु आहार बना आजीविका का मजबूत आधार। संध्या 6 बजे 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। शामे बहार। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते के जरिए वैश्विक बाजार में भारत की पहुंच बढ़ेगी। वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से तक पहुंच बनाने का लक्ष्य। आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर मैसूर में आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संरक्षण और पुनरुद्धार पर होगा मंथन। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी श्री विजयपुरम में होगा खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम, युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेगा संवाद का मंच। और अंडमान पुलिस के व्यावहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक सड़क 28 अगस्त तक निर्धारित समय में बंद रहेगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 8 से 9 और देशों तथा देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के करीब 75% हिस्से को कवर करेंगे। जापान में व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने डेटा सेंटर, विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश की बड़ी संभावनाएं बताई। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूर में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना तथा देश भर के आदिवासी संग्रहालयों को मजबूत करना है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस दौरान आदिवासी भाषाओं में कर्नाटक प्राइमर्स जारी किए जाएंगे और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही आदि वाणी प्लेटफॉर्म में नए अपडेट किए जाएंगे, जिनमें 5 नई भाषाओं को शामिल करना और नया iOS एप्लीकेशन प्रमुख है। अंडमान निकोबार प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर और मध्य अंडमान के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सुभाषग्राम, डिगलीपुर, मायाबंदर और रंगत के विद्यालयों में छात्रों को ओजोन परत के महत्व, ओजोन क्षरण तथा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रश्नोत्तरी और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज छात्रों के लिए विज्ञान सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें 9 छात्रों ने ग्लोबल एक्शन फॉर ए कोलर प्लैनेट विषय पर प्रस्तुतियां दी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना था। टैगोर राजकीय शिक्षा

महाविद्यालय श्री विजयपुरम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम वरीयता सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 28 अगस्त तक सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 31

बढ़ाना था। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय श्री विजयपुरम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम वरीयता सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 28 अगस्त तक सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 31 अगस्त को परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा, जबकि नियमित कक्षाएं 1 सितम्बर से शुरू होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, खेलो इंडिया संवाद और सड़क बंद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को विजयपुरम में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं और खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद स्थानीय युवा संवाद होगा। दक्षिण अंडमान में यह कार्यक्रम टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय और डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगा, जिसमें करीब 600 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा खेलेगा भारत जीतेगा भारत विषय के तहत किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पर्ल देवदास ने अंतर विभागीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के साथ समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों से खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना तथा खेल भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। समारोह के दौरान अंतर विभागीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम का समापन 29 अगस्त को छात्र छात्राओं के लिए क्रॉस कंट्री और फिटनेस रन के साथ होगा। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के निर्देश पर अंडमान और निकोबार पुलिस के टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक सड़क को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क 28 अगस्त तक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। आम लोगों से इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के सहयोग से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्त समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। मुख्य अतिथि एस कृष्णा चैतन्य ने कहा कि स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतियोगिता में छात्रों ने पेंटिंग, संगीत, नृत्य, स्लोगन लेखन और रील मेकिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य अधिकारियों ने नयागांव निवासी रमाकांत झा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रमाकांत झा का कल निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि अध्यापकों और विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह नियुक्ति लोक प्रशासन और भारत को समझना विषयों के लिए आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। चयनित अतिथि अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक विवरण अंडमान कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन तथा राज्य स्तरीय खेल संघों ने द्वीप समूह के पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ खिलाड़ियों से अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। योग्य पूर्व खिलाड़ी संबंधित राज्य खेल संघ के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। एसोसिएशन के अनुसार पंजीकृत पूर्व खिलाड़ियों के

0: नामों पर खेल पुरस्कारों के लिए सिफारिश, एथलीट कमेटी के गठन और संबंधित प्रक्रियाओं के तहत रोस्टर तैयार करने जैसे मामलों में विचार किया जाएगा। चेन्नई से आ रहे जहाज एमवी स्वराजदीप के 26 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे राजधानी श्रीविजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज पर कुल 421 यात्री सवार हैं। जहाज के हेड जेटी पर पहुंचने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए वैश्विक बाजार में भारत की पहुंच बढ़ेगी। वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से तक पहुंच बनाने का लक्ष्य। आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर मैसूर में आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संरक्षण और पुनरुद्धार पर होगा मंथन। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी श्री विजयपुरम में होगा खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेगा संवाद का मंच। और अंडमान पुलिस के व्यावहारिक प्रशिक्षण के चलते गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक सड़क 28 अगस्त तक निर्धारित समय में बंद रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
7: जन पॉलिसी जन कैयल।
1: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
8: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
9: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
10: हाँ। नहीं झुमके
11: ना, पहले बचत
10: पहले झुमके।
11: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
10: लेकिन झुमकों का क्या,
11: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
12: आरबीआई कहता है
13: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप के तटीय भागों एवं आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि वे आज से 27 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चेन्नई से आ रहा जहाज एमवी स्वराजदेव की 26 अगस्त की सुबह 9 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज पर कुल 421 यात्री सवार हैं। जहाज हेडवाफ पर लगेगा। अब सुनिए अंतरद्वीपीय जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी नालंदा कल 25 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी सेंटिनल कार निकोबार की यात्रा पर कल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान अगले दिन 26 अगस्त को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी

गली बॉय, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 25 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इस जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इस जलयान की वापसी कल सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा तथा यह जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए रवाना होगा और 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एम वी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म कच्चे धागे से। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और कुमार सानू की। आइए अब सुनते हैं नरसिम्हा फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक को।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का चौथा सोमवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें आवाज़ नहीं मिलती, कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, जुबां तक नहीं आती। रात की खामोशी में जब यादें दस्तक देती हैं कि रात की खामोशी में जब यादें दस्तक देती हैं तब दिल की हर धड़कन एक फरियाद बन जाती है।

0: दोस्तों, ये शाम भी कुछ कह रही है, ये मौसम भी मेहरबान है। आज जाने की बात ना हो तो शायद पल थोड़ा आसान है। कुछ मुलाकातें वक्त से नहीं, दिल से तय होती हैं। कि कुछ मुलाकातें वक्त से नहीं, दिल से तय होती हैं, और कुछ शामें बस ठहर जाने के लिए होती हैं।
1: आज जाने

नजरें झुके तो हया का एहसास होता है, नजरें उठें तो दिल को कुछ खास होता है। मोहब्बत को हर बार लफ्ज़ों की ज़रूरत कहाँ के मोहब्बत को हर बार लफ्ज़ों की ज़रूरत कहाँ, कभी एक नज़र ही पूरी दास्तान कह जाती है।

इन आँखों में जाने कैसी कशिश छुपी है कि एक नज़र पड़े तो दिल ठहर सा जाए। कुछ निगाहें सवाल नहीं करती, फिर भी अपने जवाब छोड़ जाती हैं। कि कुछ निगाहें सवाल नहीं करती, फिर भी अपने जवाब छोड़ जाती हैं। और कुछ आँखें बिना कहे ही पूरी गज़ल सुना जाती हैं।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ युवावाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी को इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए फिल्म मैं तेरा आशिक का एक गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास ने। नरेश शर्मा का संगीत है और इस गीत को लिखा है दीपक स्नेह ने।

0: Say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन की एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर

0: आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उदित नारायण और डिंपल वर्मा को फिल्म चोर मचाए शोर में। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं अनु मलिक।

अब सुनिए फिल्म जानम में अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव को। फैज अनवर की रचना है, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
0: श्रोताओं, अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट,

0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
1: We have free trade agreements or preferential market access.
2: भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट

0: के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता

0: नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीख कर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर है 0112317171 0112317171 06 और 0112334444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसी योजनाएं लाए हैं जो रोज़मर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम लोग 3 से 6 महीने के। साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएं या कुछ पैसे कमा पाएं। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके ज़रूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
0: जी। अच्छा प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन से स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या

0: लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि
1: जी
0: कौन से सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा मिल सकती हैं। इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है। देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल एस्टेट है, बाकी जगह भी है। तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर, ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियाँ फिर हैं।
1: जी
0: हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का, किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना
1: जी
0: चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा।
1: जी और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार
1: नमस्कार
2: सर।
0: नमस्कार
1: नमस्ते।
2: सर मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
0: भूपेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि PWD के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं जहाँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की, इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
3: साथ में मैं ये
1: जी
3: भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
1: मानसी जी आपने ITI की बात करी है तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है। तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
3: जी PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोजगार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसी सोच के द्वारा PM सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर,
1: जी
3: उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें। तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
1: जी
3: एक हमारे देश में 1,000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी
1: जी
3: जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा। एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं उसमें 241 करोड़ तक

0: का बजट वहाँ प्रावधान किया
1: जी
0: गया है, और ऐसे पूरे स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग आठ
1: जी
0: क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है? इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है। कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं? तो हमारे आईटीआईज को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब पीएम सेतु लाता है।
1: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला।
1: नमस्कार।
2: और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न है।
0: जी राकेश जी धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो आईटीआईज हैं हर जिले के स्तर पर, भी आइडिया ये है कि उन आईटीआईज के द्वारा जो है, वहाँ बहुत से आईटीआईज में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप्स के लिए जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने।
3: जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके साथ सेंटर्स हैं। आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पर मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं।
1: प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
3: मैम आप लेना चाहिए।
0: हाँ जी, सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही डीडीयू जीकेवाई स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो हैं वो महिलाएं ही हैं, तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला, पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं। आप देखिए, हमारी कुछ आईटीआईज हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं।

0: एक आईटीआई जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा
1: बिल्कुल
0: है,
1: ई रिक्शा तक
0: आप
1: चला
0: ई
1: रही हैं।
0: रिक्शा तक
1: जी
0: चला रही
1: जी
0: हैं, पिंक पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं, तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि
1: जी
0: तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो बढ़ रहा है। अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी
1: जी
0: है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें, और नए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन, सब में महिलाएं अब आगे
1: जी
0: बढ़ रही हैं।
1: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी,
1: नमस्कार।
2: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्ते,
2: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: हाँ थैंक यू मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आईटी से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ। मैं स्पीच थेरेपी मेरी इच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं।
0: जी रवि जी, आपने आईटीआई से प्रशिक्षण ले लिया है, ये मैंने समझा आपके प्रश्न में। तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन्होंने आईटीआई से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, वो यदि पढ़ाना चाहते हैं आईटीआई इकोसिस्टम में, तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप एनएसटीआईज या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो, और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीज़ें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
1: प्रशांत जी, मानसी जी ने बता दिया कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो एनएसडीसी प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
3: देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है।
1: जी
3: जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप आईटीआई से निकले, तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है
1: जी
3: जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे बच्चे नैप्स में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहाँ वो इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी
1: जी
3: इक्विपमेंट पे, उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं। तो उससे नौकरियाँ काफ़ी, या तो वो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है,
1: जी
3: स्किल इंडिया डिजिटल हब। अगर आप मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है, इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं। काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहां पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं, अभी बेलूर घाट बंगाल में काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने
1: जी
3: किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा
1: जी
3: सकते हैं।
1: प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो हैं आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
3: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउज़र के द्वारा। और आप वहाँ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है।
1: जी
3: इसमें 8800055555, 5 बार 5, ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो

0: फॉर्म भर के हमें वहाँ पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
2: धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का माध्यम?
1: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
2: जी, जी, जी, जी, जी।
1: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
2: जी
3: जी जी। तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप सिद्ध वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर्स साथ में लेकर, टाइप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ के साथ, और वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीज़ें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में हैं तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, मानसी जी आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
3: जी आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं। तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं। तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है प्रशांत जी।
0: जी इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेज़ी से हम लोगों ने देखा है कि लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे। तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज़ में बहुत लोग

0: आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं
1: जी
0: उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं।
1: जी और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से संजीव जी। जी संजीव जी
2: जी नमस्कार आप सभी को।
1: नमस्कार।
2: जी मैंने कोर्स किया मैडम जी, DDUGKY में, यहाँ यमुनानगर से। और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जी? तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला जी। बैटरी डिपेंडिंग का कोर्स किया और ड्रोन दौड़ने
1: संजीव जी
2: का
1: आपकी
2: कोर्स।
1: आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है?
2: जी DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया जी,
1: बैटरी
2: और
1: रिपेयरिंग,
2: हाँ जी, और
1: ठीक है,
2: ड्रोन का भी कोर्स किया,
1: ड्रोन
2: ड्रोन
1: का भी
2: वो
1: किया
2: दौड़ना।
1: आपने? जी
2: हाँ जी, तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली ना एग्जाम हो, और मेरी एज भी 44 ईयर्स है होगी। तो ये बोलते हैं कई जगह के भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम?
1: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज़्यादा है, तो कैसे होगा?
0: जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है। मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज़्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपने खुद का काम करने का, पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहाँ ड्रोन का एप्लीकेशन है।
1: प्रशांत जी आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसे का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है?
0: जी इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है,
1: जी
0: जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSDC में करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है।
1: जी
0: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको लोन देने का प्रोविज़न है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविज़न रहता है।
1: जी और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी
3: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपके टीम को नमस्कार। आपने मेरी बातों को सुना, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या? और ऐसा कोई स्किल है, और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए।
0: जी इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है 3 या 4 दृष्टिबाधित व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते
1: जी
0: हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ और बहुत ही सक्षम रूप से उस काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है, जो ये दृष्टिबाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही हैं। तो मैं ही बोलूँगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी?
4: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी।

0: कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आज़माएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप में भी जाते
1: जी,
0: हैं
1: बिल्कुल, जो तो चीन की शंघाई में होने वाली है।
0: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशी आते हैं।

आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। और लिख भेजें कार्यक्रम का नाम, संदेश से आते हैं, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें ताकि हम इस कार्यक्रम में आपके पसंद के गानों को शामिल कर पाए। तो चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज की पहली फरमाइश, जिसे हमें भेजा है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी ने। तो चलिए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है महुआ।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए, और इस गीत को हम सुनाना चाहते हैं असम से हितेंद्र दास जी को और मध्य प्रदेश से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक जी को। चलिए सुनिए हमारी पसंद का यह गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पूरब और पश्चिम से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है महाराष्ट्र बीड शहर से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करुणा, बाला साहेब रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे जी ने।

चलिए अगला गीत सुनते हैं फिल्म नील कमल से, और इस गीत के लिए फरमाइश की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार जी ने।

श्रोताओं, अब सुनिए पड़ोसन फिल्म का ये गाना। और इस गीत के लिए हमें व्हाट्सएप किया है नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुरदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी ने।

श्रोताओं, अब हम चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों एवं आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि आज से लेकर 28 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि

100.9 मेगाहर्ट्स विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

प्राइमरी स्टूडियो एंड द टाइम इज 4:49, 54, 55, 56, 57. Announcer mic number 2 and the time is 4:50, 03, 04, 05, 06. Number 1.

0: कंप्यूटर टू।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: हेलो लिसनर्स, मैं हूँ चैताली

माइक नंबर टू एंड द टाइम इज 4:51, 58, 59, एग्जैक्टली 4:52, 1

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।